0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: समिति हो 14 के में बोदे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखाई हमरो
2: खाई खाई बहु कोई लोटी बढ़ दिलवा
3: आंगे समिति हो लोटी पर दियो छांता ही गुरी
2: बढ़ दिया बढ़ दिवा लोटी खाली पढ़ दिम बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्थे के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
1: सतर्क
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेतरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई रेडियो आदि खुला 105.4

एसएस आदि फ्ला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सेंजा।